0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র অথবা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা, একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে নিখিল কুমার। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेता

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर

गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्री राम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। 2 अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है।

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीटर

0: मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताया।

0: आकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
4: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the 25th Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Center in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
3: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappatti Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
5: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
3: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
6: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
3: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade.

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। सुबह के 9:10:37 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम रस धारा में।

जी हाँ दोस्तों, गवाह है चांद तारे, गवाह है हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो उचित हो या अनुचित। कहते हैं ना कि हर चीज का गवाह ये जो सृष्टि का एक एक कण वो होता है। तो आज है रेड क्रॉस दिवस। जी हाँ, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, और वही हमारा विश्व आज मना रहा है। दुनिया भर में मानवीय सेवाएं प्रदान करने वाले लाखों स्वयंसेवकों कर्मचारियों को सम्मानित करता है ये दिवस। आज की थीम है, यानी 2026 की विषय है, मानवता को जीवित रखना। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, चिकित्सा जैसी आपातकालीन स्थितियों के परिणाम स्वरूप कई बार ऐसा होता है कि हम संकट में होते हैं, संघर्षों का सामना करना होता है, अन्याय कई बार होता है, अत्याचार होता है। और ऐसे में यदि, जी हाँ, हमारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं करुणा के साथ यदि आगे बढ़कर आती हैं और सहायता का हाथ बढ़ाती हैं, तो उनको, जी हाँ, हम उनको एक मान और सम्मान देने के लिए ये दिन मनाते हैं। कहते हैं ना कि सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। तो दोस्तों, आज हमारी थीम यही है, सेवा करना।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि सेवा परम धर्म है, निस्वार्थ सेवा से सर्वोच्च धर्म और कर्तव्य मिलता है। तो दोस्तों, हमारे महापुरुषों ने भी हमेशा हमें यही कहा है कि हमें ज़िंदगी में एकता और प्रेम के साथ सभी की मदद करनी चाहिए। और इससे हमारे जो संदेश मिलता है वो ये कि सेवा का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा या दिखावे के मानवता की भलाई करना। इस विचारधारा से हमें हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम इंसानों की सेवा करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा से मन में करुणा, दया, प्रेम, आत्मसंतोष जैसे मानवीय गुणों का विकास भी होता है। कहते हैं कि सेवा ही धर्म का अर्थ है, कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना ही सर्वोच्च कर्तव्य और पूजा है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र भी तो यही है कि जो मानता है दुखी, ज़रूरतमंद या मूक जीवों की सेवा करता है वही ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से भाग लें, किंतु ज़िंदगी से नहीं भागने के लिए हमें ऐसा मार्गदर्शन देते हैं जो लोग, वो भी तो मानव सेवा का ही धर्म निभाते हैं। बिल्कुल, दूसरों की भलाई करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, यह भी समाज सेवा है जो कि हमें शांति देती है, आत्मिक सुख देती है। भूखे को भोजन देना, गरीब को कपड़े, ज़रूरतमंद छात्रों को किताब देकर सहायता करना, हम ऐसे काम करते हैं। ऐसे कई बार एनजीओ के साथ जुड़ते हैं, और सिर्फ एनजीओ के साथ क्यों, खुद भी एक व्यक्तिगत स्तर पर हम मदद कर सकते हैं। रक्तदान देना, नियमित रूप से यदि ब्लड डोनेशन करें तो वो भी एक बड़ा धर्म होता है। दोस्तों, इस धर्म को निभाने के लिए हमें अपने ऊपर दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है।

जी हाँ, कहते हैं ना कि सेवा से मुख्य लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं? अपने लिए मानसिक शांति मिलती है। जी हाँ, यदि हम दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो मन को असीम शांति मिलती है, सकारात्मकता का प्रसार होता है, छोटी सी मदद से समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है, सेवा का भाव मनुष्य में विनम्रता, दया, कृतज्ञता जैसे गुण भी लेकर के आता है। तो दोस्तों, व्यक्ति यदि दूसरों के लिए प्रार्थना करे तो आपके खुद के लिए प्रार्थना हो जाती है और हम उस सुकून में जिसकी तलाश में होते हैं वो सुकून हमें खुद मिल जाता है।

जी हाँ दोस्तों, ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है और आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसधारा। मैं थी सविता। 12 बजे आपके साथ कार्यक्रम सुरभि में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तो चलते चलते आपके लिए एक और प्यारा सा गीत, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। और इसी के साथ आपकी दोस्त सविता अब आपसे चाहती है इजाज़त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता

0: गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Subhadra Ramachandran. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The first BJP government in West Bengal will take oath tomorrow, the 25th of Boishak, at the Brigade Parade Ground. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central leaders may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number of 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappa

मीटर वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचार चैनल है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 10:15 और 56 सेकंड हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल संचेता और आपका इस चैनल पर पसंदीदा प्रोग्राम अंजुमन और मैं हूं आपकी हरदिल अजीज दोस्त शाइस्ता नाज। आप सभी सामिन को मेरा प्यार भर

दोस्तों भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और HSP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये नगमा। फिल्म का नाम था साजन। दोस्तों पेश है मंजरनामा जिसमें आप समाप्त फरमाएंगे फ्री नेशन वाइड फॉर HPV वैक्सीनेशन फॉर 14 इयर्स ओल्ड गर्ल, यानी मुफ्त कौमी HPV वैक्सीनेशन मुहिम 14 साल लड़कियों के लिए। दोस्तों आज हम एक ऐसे पॉइंट पर बात कर रहे हैं जो सेहत बख्श मौजू है, जिसका ताल्लुक हमारी बेटियों के महफूज और रोशन मुस्तकबिल से मौजू जुड़ा हुआ है। 14 साल लड़कियों के लिए मुफ्त कौमी HPV वैक्सीनेशन मुहिम। हर वालदीन की ख्वाहिश होती है कि इनकी बेटियां सेहतमंद, मजबूत और बीमारियों से महफूज रहें। जदीद तिबी साइंस ने कई खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार की हैं। इन्हीं में एक वैक्सीन है HPV वैक्सीन, यानी ह्यूमन वायरस के एक ऐसा वायरस है जो HPV कई अकसाम की बीमारियों का सबब बन सकता है। ख़ास तौर पर यह ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर की एक बड़ी वजह समझा जाता है। दुनिया भर में लाखों ख़वातीन इस बीमारी का शिकार होती हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर वक्त वैक्सीन के जरिए इस ख़तरनाक मर्ज से काफ़ी हद तक बचाव मुमकिन है। सेहत आमा को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत और तिबी अदारों की जानिब से मुल्क भर में 14 साल तक की लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद बच्चियों को मुस्तकबिल में होने वाली संगीन बीमारियों में महफूज बनाया है। हिंदुस्तान ने इस मुहिम को शुरू करके बहुत ही बेहतरीन काम अंजाम दिया है। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों, सेहत मराकज, स्कूलों, अक्वाम पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत हद तक ये HPV वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को इसकी मुहिम की अहमियत को समझाया जा रहा है। सेहत आमा को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत और तिबी अदारों की जानिब से हिंदुस्तान में 14 साल तक की लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन मुहिम शुरू की गई है। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी अस्पतालों, सेहत मराकज, स्कूलों और खसूसी कैंपों में लड़कियों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। वैक्सीन क्यों ज़रूरी है ये आपको बता दें कि अक्सर लोग बीमार होने के बाद इलाज की फिक्र करते हैं, जबकि जदीद तिब ये कहती है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। सर्वाइकल कैंसर के ख़तरे को कम करती है ये वैक्सीन, जिस्म के मुदाफती निज़ाम को मजबूत बनाती है, मुस्तकबिल में कई पेचीदियों से बचाती है। माहरीन के मुताबिक कम उम्री में वैक्सीन ज़्यादा मौसर साबित होती है, इसलिए 14 साल तक की बच्चियों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों इस मुहिम की कामयाबी में वालदेन का किरदार सबसे अहम है। बाज़ औक़ात लाइल्मी अफवाहों या खौफ की वजह से लोग वैक्सीन से हिचकिचाते हैं, लेकिन याद रखें वैक्सीन आलमी सतह पर मंजूर शुदा है, लाखों बच्चियों को महफूज तरीके से दी जा चुकी है और तिबी माहरीन इसे महफूज और मौसर करार देते हैं। लिहाजा वालदीन को चाहिए कि अपनी बेटियों को वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं, करीबी सेहत मरकज से मालूमात हासिल करें और दूसरों में भी शऊर बेदार करें। स्कूलों और समाज की भी जिम्मेदारी है। स्कूल इंतजामिया, सादजा और समाजी कारकुनान भी इस मुहिम में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगर तालीमी इदारों में आगाही प्रोग्राम मुनक्द हो तो बच्चियों और वालदेन दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा। समाज में सेहत से मुतालिक बेदारी पैदा करना हम सब की मुश्तरक जिम्मेदारी है। वैक्सीन हमारी बच्चियों को महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। हर वक्त वैक्सीनेशन न सिर्फ कैंसर से बचाव में मदद देती है बल्कि सेहतमंद

0: नदीम साहब, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में खैर मकदम है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: दोस्तों, आकाशवाणी की खुसूस इनकलाब हयात क्या कहिए, आदमी ढल गया मशीनों में। दोस्तों, साइंस एक ऐसा मजमून है जिसके लिए बच्चों के जहन में तजस्सुस बरकरार रहता है, क्योंकि इनका कदम एक नया बाब है और नए तजुर्बे से आशना करता है। साइंस से इसी आशनाई के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान प्रोफेसर नदीम हैदर तशरीफ रखते हैं, जो नेताजी नगर डे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं और साथ ही साथ आप सदर शोभा फिजियोलॉजी भी हैं। नदीम साहब, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में खैर मकदम है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: दोस्तों, आकाशवाणी की खुसूसी पेशकश हफ्त रोजा साइंस खेल खेल में हम अपने सामाईन के लिए हर हफ्ता कुछ नई चीजों को मौजूए बहस बनाते हैं। नदीम साहब, आज आप किस मौजू पर रोशनी डालने के लिए जा रहे हैं?
1: आज हम लोग एक आसान सा तजुर्बा करने जा रहे हैं, जो तजुर्बा बीजों की नशोनुमा या फिर पौधे की बालिदगी यानी प्लांट ग्रोथ को आया करेगी।
0: जी,
1: इस सिलसिले में कुछ बातें पहले बताने की जरूरत है।
0: जी बेशक।
1: सबसे पहली बात है कि प्लांट ग्रोथ यानी पौधे की बालिदगी क्या है और कैसे समझेंगे कि पौधों में बालिदगी होती है। तो पौधे की बालिदगी एक ऐसा अमल है जिसके जरिया वक्त गुजरने पर पौधे के अंदर कुछ तब्दीलियां देखने को मिलती है। उन तब्दीलियों में पौधों के मास में इजाफा होना, उसके वजन और हजम में इजाफा होना, ये सारी चीजें शामिल है। और पौधे के मास या वजन में इजाफा होने का कारण एक्चुअली ये है कि पौधों के अंदर माइटोसिस का अमल होता है, सेल डिवीजन का अमल होता है।
0: जी बेशक।
1: और सेल डिवीजन के साथ साथ पौधे की बालिदगी में इजाफा होता जाता है।
0: यकीनी तौर पर जो बच्चे साइंस के सब्जेक्ट से मुंसलिक हैं, वो इन चीजों पर जो है खुसूसी तौर पर जो है तवज्जा देंगे और वो जानते भी हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं।
1: जी हाँ जी, बेशक।
0: पौधे की बालिदगी से क्या मुराद है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसानों में जो है वो तब्दीलियां आती हैं, बच्चे से वो जवान होता है, जवान से बुढ़ापे की तरफ रागिब आता है, तो क्या पेड़ पौधे में भी इस तरह के रुझान देखे जाते हैं?
1: जी हाँ, बेशक। पौधे की बालिदगी इंसान, कोई भी जानवर या फिर पेड़ पौधा, सबों में देखी जाती है, लेकिन जानवरों और पौधों की बालिदगी में कुछ फर्क है।
0: जी,
1: वो ये है कि जानवरों या इंसानों की बालिदगी एक खास वक्फा के बाद रुक जाती है, लेकिन पौधों में ये बालिदगी जब तक पौधा ताहयात रहता है, जिंदा रहता है, तब तक उसके अंदर ये अमल जारी रहता है।
0: हैदर साहब, आप ये कहना चाहते हैं गर्चे ये सुस्त अमल है बालिदगी का,
1: बेशक,
0: लेकिन ये ताहयात जारी रहने वाला अमल है।
1: ताहयात पौधों में होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: जी हाँ, ताहयात पौधों में होती है, लेकिन जानवरों और इंसान की बालिदगी एक खास अरसे के बाद रुक जाती है।

0: जाती है नहीं बोलेंगे, स्टैटिक हो जाती है,
1: अच्छा,
0: थम जाती है।
1: जी जी जी,
0: बालिदगी की रफ्तार थम जाती है, क्योंकि बालिदगी तो जब तक एक जानदार जिंदा है तब तक उसमें होती रहेगी।
1: जी बेशक।
0: लेकिन उसकी रफ्तार जानवरों और इंसानों में एक खास वक्फा के बाद थम जाती है, स्टैटिक हो जाती है।
1: जी जी जी।
0: लेकिन पौधों में ये अमल ताहियात जारी रहता
1: अच्छा।
0: है, मेरा कहने का यही मकसद।
1: हाँ, तो अब हमारा एक और सवाल ये है कि बीजों की नशोनुमा से क्या मुराद है?
0: बीजों की नशोनुमा के कुछ निशानियां हैं, उनमें से एक निशानी है कि बीज नशोनुमा करते वक्त इनिशियली शुरुआत में थोड़े से फूल जाते हैं, साइज उनका इजाफा हो जाता है।
1: जी।
0: और उसके अंदर प्राइमरी रूट्स जैसा व्हाइट कलर का एक
1: अंकुर
0: निकल आता है, जिसे एक्चुअली हम लोग साइंस के लफ्ज में कहते हैं रेडिकल।
1: जी बेशक।
0: और फिर कुछ दिनों के बाद ये अमल अगर जारी रहा तो उसके ऊपर के जानिब से एक हल्का सब्ज रंग का तना दिखाई देता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल। तो ये रेडिकल और प्लीम्यूल का निकलना ये बीजों की नशोनुमा की निशानदही करता है, जिसे देखकर हम ये समझ सकते हैं कि बीजों में नशोनुमा हो रही है।
1: सच है नदीम साहब, जिन चीजों के बारे में अभी आपने निशानदही की, यकीनी तौर पर ये बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे कि हमारे नजर के सामने ये सारी चीजें अमल में आ रही हैं।
0: बेशक
1: जी। अच्छा, इसी सिलसिले में अब चलते चलते एक और सवाल है कि आखिर इस मुताले के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर आप चाहें घर पे इस मुताले?
0: जी, हम लोग
1: करना...
0: ये इस अमल को घर पे ही अंजाम दे सकते हैं।
1: जी।
0: और इसे अंजाम देने के लिए, इस मुताले को करने के लिए, सबसे पहले तो हमें 4 से 5 दाना चने का बीज लेना है।
1: जी।
0: एक शीशे का ग्लास लेना है, या फिर हम शीशे का शफाफ प्याला भी ले सकते हैं।
1: जी बेहतर।
0: थोड़ी सी रुई यानी कॉटन लेनी है, पानी की जरूरत है और रोशनी की भी जरूरत है। रोशनी के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अपने घर के खिड़की के करीब रखने से होगा।
1: थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा कि अभी आपने जिक्र किया चने का।
0: जी हाँ।
1: तो चना क्या मखसूस, माने इस अमल के लिए चना जो है वो मखसूस है, या इससे बेहतर नतायज सामने आ सकते हैं इसलिए चना जरूरी है?
0: चने के जगह पे हम लोग मूंग का दाल भी ले सकते हैं।
1: जी।
0: या फिर किसी दूसरे प्लांट का बीज भी ले सकते हैं।
1: जी बेहतर।
0: लेकिन चने में ये मुशाहिदा बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है।
1: जी।
0: बिल्कुल क्लियरली वाजे हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इसके वजह से हम लोग चने का ही मुंतखिब करते हैं।
1: अच्छा जी। इसका तरीका कार क्या है?
0: इसके तरीका कार में सबसे पहले हमें एक शीशे का प्याला लेना है, उस प्याले के अंदर रुई का कॉटन का एक मोटा लेयर बिछा देना है, उसे पानी से भिगो देना है और उस कॉटन के ऊपर, प्याले में कॉटन के ऊपर 4 से 5 बीज चने का रख देना है।
1: जी।
0: रखने के बाद ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार हुआ है,
1: जी,
0: उसे अपने घर के खिड़कियों के करीब रखना है ताकि सूरज की रोशनी और हवा उसे मिलती
1: रहे। इस तजुर्बे के लिए वो सूरज की रोशनी और हवा का होना भी जरूरी
0: जी,
1: है।
0: जी, इस तजुर्बे के लिए
1: जी
0: रोशनी की जरूरत है, पानी की जरूरत है
1: जी
0: और हवा की भी जरूरत है। इन सारे चीजों का होना लाजमी है।
1: जी।
0: अगर इनमें से किसी भी एक चीज की कमी हो
1: जी
0: तो ये मुताला अंजाम देना मुमकिन नहीं,
1: अधूरा रह जाएगा। जी। मुताले का नतीजा क्या निकल के सामने आता है इस सिलसिले में?
0: ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने बनाया है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को या फिर इस मुताले का नतीजा देखने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 दिन का वक्त लगेगा, जिस दौरान रोजाना उसका मुशाहदा करता रहना पड़ेगा।
1: जी।
0: सबसे पहले 1 से 2 रोज के बाद जब हम उस चने के बीज को निकाल कर देखेंगे तो उसमें जो फर्क हमें मिलेगा कि चने का बीज फूल गया है, साइज में बड़ा हो गया है।
1: अच्छा।
0: और थोड़ा सा नर्म हो गया है, क्योंकि ऑस्मोसिस का अमल उसके अंदर हुआ है।
1: अच्छा, यहाँ भी ऑस्मोसिस का अमल,
0: यहाँ पे भी ऑस्मोसिस का अमल हो रहा है, क्योंकि हमने कॉटन के अंदर जो पानी डाला है
1: जी,
0: उस पानी को एक्चुअली चना जज्ब कर रहा है। देखिए, ये तो अमल हम लोग घर पे कर रहे हैं
1: जी,
0: और बाहर फील्ड में ये जो अमल होता है वहाँ पे भी पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है
1: जी।
0: लेकिन फर्क सिर्फ ये है کہ گھر پہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اس میں پودا یعنی کہ چنا کا بیج جی. پانی کو کاٹن سے ابزارب کر رہا ہے آسموسس کے عمل کے ذریعے اور باہر میں فیلڈ میں جو ہوتا ہے وہ مٹی سے پانی کو ابزارب کرتا ہے. لہذا پودے کی بالیدگی کے لیے مٹی ضروری نہیں ہے, پانی ضروری ہے. ایکچولی پودا مٹی سے پانی کو حاصل کرتا ہے اور منرلز کو حاصل کرتا ہے.

0: तो ये पानी और मिनरल्स यानी जो भी जरूरी लाजमियात है
1: जी,
0: उसको अगर हम मुहैया कर दें अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो हम जिस चीज का मुताला या मुशाहदा करने जा रहे हैं उसे आसानी से देखा जा सकता है।
1: यकीनी तौर पर ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि मिट्टी सेकेंडरी है बनिस्बत पानी के, पानी जरूरी है मिट्टी।
0: जी हाँ, मिट्टी जरूरत है पानी और मिनरल्स को जज्ब करने के लिए। अगर पानी और मिनरल्स हम मिट्टी के बगैर पौधे को सप्लाई कर दें तो मिट्टी की जरूरत नहीं है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अभी लेटेस्ट बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स निकल आए हैं, जैसे एरोफोनिक्स बोलकर एक टर्म है, एरोफोनिक्स मतलब
1: है?
0: आप हवा में फिजा में पौधे को उगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: मिट्टी के बगैर।
1: जी जी।
0: और इस तरह के टेक्नोलॉजी बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके जरिए नए नए तरह के पौधे उगाए जा रहे हैं। इस एरोफोनिक्स में क्या किया जाता है कि मिट्टी का सपोर्ट नहीं लिया जा रहा है, प्लांट को किसी रस्सी के जरिया या किसी बेस के जरिया फिजा में सपोर्ट दे दिया जा रहा है और उस सपोर्ट के जरिया उसे पानी मिनरल्स वगैरह वक्त के मुताबिक मिलता जा रहा है और पौधे में बालिदगी होती रहती है। यानी मिट्टी के बगैर अगर पौधे की बालिदगी हो रही है, उसे सारी जरूरी लाजमियात मिल रहे हैं, तो उसको एरोफोनिक्स बोला जा रहा है, एयर में प्लांट की बालिदगी हो रही है।
1: अच्छा,
0: एरोफोनिक्स।
1: अच्छा, इस तरह की चीजें हम अक्सर मतलब गैर ममालिक में आमतौर पर देखने में।
0: जी हाँ जी हाँ, बेशक।
1: क्या इसका चलन हमारे मुल्क में भी मतलब हो रहा है?
0: हमारे मुल्क में इसका चलन है, लेकिन ये चलन आम नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए ये चलन किया जाता है। किसी मुशाहदा या किसी मुताला के जरिया ये किया जा रहा है। वजह उसकी ये है कि एरोफोनिक्स का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तो उसके लिए खर्च बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: और ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है
1: जी।
0: तो हम लोगों के यहाँ जनरल वे में मिट्टी को ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मिट्टी के बगैर ही लोग पौधे उगाना शुरू कर देंगे और अभी से वो वक्त आ गया है
1: जी जी।
0: हमारे मुल्क में ये चलन आम नहीं है, लेकिन गैर ममालिक में दूसरे मुल्कों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एरोफोनिक्स के जरिया अपने अंदर पौधे को उगा रहे हैं।
1: सर, चलते चलते कुछ बातें हैं जो तृष्णा लब है और चाहेंगे कि आप उसकी वजाहत करें कि मान लीजिए कि बीजों में पानी ना डालें या फिर रोशनी मुहैया ना हो तो ऐसी सूरत में क्या होगा?
0: देखिए, ये जो पौधे की बालिदगी मैंने पहले भी बताया कि बीज की नशोनुमा या पौधे की बालिदगी का जो मुशाहदा है उसे हमें टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना होगा
1: जी।
0: और कम से कम 5 से 6 दिनों तक ऑब्जर्व करना है
1: जी।
0: पहले 1 से 2 दिन में जैसा कि मैंने बताया कि बीज का साइज बढ़ जाएगा और बीज थोड़ा सा नर्म हो जाएगा। फिर 3 से 4 रोज के बाद जब बीज का मुशाहदा हम करेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर छोटा सा सादा सा अंकुर निकल आया है जिसको हम प्राइमरी रूट या फिर रेडिकल कहते हैं। और उसके एक्सपेरिमेंट शुरू करने से 4-5 रोज के बाद जब उसको देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा तना जैसा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकल आता है जिसे कहते हैं हम प्लीम्यूल। तो ये सारी चीजें जो हमने मुशाहदा किया इस तजुर्बे के जरिया, इस सारे चीजें को ऑब्जर्व करने का ये जाहिर अमल है कि उसके अंदर में कुछ नई चीजें बन रही हैं और उसके साइज में भी इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं इसके जरिया कि ये इजाफा रोजाना और भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं
1: जी।
0: तो इसके लिए हम लोग स्केल के जरिया ये जो प्लीम्यूल और रेडिकल निकल रहे हैं नशोनुमा के दौरान इसकी पैमाइश कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, मिलीमीटर के यूनिट में हम इसको मेजर करें रोजाना और उसके अंदर क्या क्या तब्दीली आ रही है उसे भी देखें।
1: मेरा मैंने अगला सवाल इसी मौजू पे है कि क्या हम वो नशोनुमा की पैमाइश कर सकते हैं?
0: बेशक बेशक, वही मैं कहने जा रहा था
1: जी
0: कि ये जो बालिदगी हो रही है पौधों के अंदर, इसको अगर और भी अच्छे तरीके से हम देखना चाहें कि बीजों की नशोनुमा के जरिया पौधे में बालिदगी हो रही है, तो पौधों में बालिदगी हो रही है अगर, तो जाहिर है उसकी लंबाई, उसके चौड़ाई, उसके वजन में इजाफा हो रहा है। तो इसे हम कैसे समझेंगे? हम एक स्केल ले लें, स्केल के जरिया रोजाना उसके अंकुर यानी के उसके रेडिकल और प्लीम्यूल यानी के उसके तना में क्या तब्दीली हो रही उसको अगर नोट डाउन करें तो जाहिर है हम देखेंगे कि दिन ब दिन ये पैमाइश, ये लंबाई बढ़ती जा रही है। और सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि ये चौड़ाई यानी पूरे हजम उसका या पूरा वॉल्यूम उसका बढ़ता रहता है। इससे ये साबित होता है कि प्लांट के अंदर

दोस्तों, अभी आप कुमार शानू की आवाज़ में ये नगमा समाअत फरमा रहे थे। फिल्म का नाम था दीवाना। दोस्तों, मोहब्बत भी क्या चीज़ है, जब साथ होती है तब भी दिल तड़पता है और जब दूर होती है मोहब्बत तब भी दिल तड़पता है और आंसू के साथ तड़पता है। तेरी आँखों की सहूलत हो मैसर मुझको, तेरी आँखों की सहूलत हो मैसर मुझको, वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा, रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारे को कहाँ देखेगा। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक और नगमा।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। जी हाँ दोस्तों, सुबह के दोपहर के 12:42 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का करते हैं स्वागत कार्यक्रम सुरभि में। और सुरभि की शुरुआत हम करेंगे चर्चा है से। चर्चा है में आज हम बात करने वाले हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व भर में रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को हेनरी ड्यूरेंट की जन्म जयंती का प्रतीक माना जाता है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हैं। हेनरी ड्यूरेंट को नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त है। उनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। इस दिन को विश्व भर के देशों को रेड क्रॉस सोसाइटीज़ में मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों तथा महामारियों के दौरान आम लोगों की सहायता करती है। दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस का इतिहास यदि हम जाने तो यह एक ऐसा दिन है जब हेनरी ड्यूरेंट की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1919 में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय समितियों का गठन किया गया था। इन संस्थाओं का उद्देश्य था विकट परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से मानव जाति की सेवा करना। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से रेड क्रॉस सोसाइटी के

संघर्षों और उपलब्धियों को याद करते हुए इस दिन को हर वर्ष एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, आज़ादी, स्वैच्छिक सेवा, सार्वभौमिकता तथा एकता जैसे आदर्श रेड क्रॉस सोसाइटी के आदर्शों की सूची में शामिल हैं। 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं और 2026 का विषय है मानवता को जीवित रखना। प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और चिकित्सा आपात स्थितियों के परिणाम स्वरूप आवश्यक सहायता प्रदान करने वाले लोगों को सम्मानित करता है यह दिन सभी को अन्याय, संकट और संघर्षों का सामना करते समय करुणा और एकजुटता के महत्व को समझाता है।

दोस्तों, ये हरिहरन और मोहित चौहान की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना और कार्यक्रम सुरभि में आगे बढ़ती है आपकी दोस्त सविता लेकर आई है पहल। जी हाँ, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक पहलों में से हम एक पहल, किसी न किसी पहल पर प्रकाश डालते हैं हर दिन। और आज की पहल है हमारी सखी निवास स्कीम। जी हाँ, सखी निवास स्कीम पर हम आज प्रकाश डालेंगे और उस पर करेंगे चर्चा। भारत सरकार का मिशन शक्ति के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए एक प्रमुख आवास योजना है। इसे पहले वर्किंग वुमेन हॉस्टल के नाम से जाना जाता था, जिसे अब अपडेट करके सखी निवास के रूप में संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, सखी निवास योजना भारत सरकार के मिशन शक्ति सामर्थ्य उप योजना के तहत एक पहल है, जो कामकाजी महिलाओं, विशेषकर शहरों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक आवास यानी हॉस्टल की सुविधा प्रदान करती हैं। यह योजना कामकाजी महिलाओं के लिए डे केयर यानी बच्चों की देखभाल की सुविधा के लिए भी सुरक्षित आवास सुनिश्चित करती हैं। सखी निवास योजना की जो खास विशेषताएं हैं वो है कि अपने घरों से दूर काम करने वाली महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देना, सुरक्षित और किफ़ायती आवास देना, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा भी देना। इसके अलावा यह योजना मुख्य रूप से उन शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहां रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यह केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% के सहयोग से संचालित करती है। इसके तहत आवास किराए पर दिए जाते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कामकाजी महिलाएं, प्रशिक्षण ले रही महिलाएं और उनके बच्चे, लड़के 18 वर्ष तक, लड़कियां भी 18 वर्ष तक हों। साथ ही ये कम से कम 10वीं उत्तीर्ण योग्यता वाली 18 से 70 वर्ष की महिलाएं आवेदन इसमें कर सकती हैं। दोस्तों, LIC की पात्रता शर्तों के अधीन बीमा क्षेत्र में पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है। सखी निवास योजना के उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करना है। साथ ही यह सेवाओं तक गैर भेदभावपूर्ण पहुंचती है। उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को भी सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार आवेदन आप कर सकते हैं ऑनलाइन। आवेदन कार्यान्वयन एजेंसी को सादे कागज़ पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त किए जा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज पहल में हमने बात की सखी निवास स्कीम की। कार्यक्रम सुरभि आप सुन रहे हैं, हिंदी पत्रिका कार्यक्रम, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। और आइए फिलहाल आपके लिए एक गीत।

ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरभि और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सविता। अब दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी 11 तारीख को, फिर से मिलेंगे हम। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और हाँ, मुस्कुराते अवश्य रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय

सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिस्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
3: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
3: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
3: जी श्रोताओं, मारियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब

0: 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी।
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
0: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड

हरजन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे काहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान

0: रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्वबोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी,

जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। April 13, 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901

0: वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

भागे, खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले, रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले, तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को

0: तक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के

0: 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैंड के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की

0: संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রজাতরঙ্গে। এখন শুনবেন খেয়াল, শিল্পী সুপ্রিয়া দে, রাগ পটদীপ।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে, ডিটিএইচ বাংলা প্রচার তরঙ্গ এবং নিউজ অন এআইআর অ্যাপে। সংবাদ একটু পরেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই জয়া ভারতী। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए

0: भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। In West Bengal, senior BJP leader Shubhendu Adhikari has been elected the leader of the BJP legislature party in West Bengal today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. BJP sources said Adhikari's name was proposed at the legislature party meeting and formally announced by Union Home Minister Amit Shah in the presence of newly elected BJP MLAs and senior party leaders.

जी हाँ, मीडियम वेव 297.6 मीटर 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। कार्यक्रम है इस वक्त उर्वशी का और लेकर हाजिर हूँ मैं रिंकू। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी में आज हम आपको लेकर चलेंगे उन सुरुचि के उस पार पे, उस विधि पे जो जिसके लिए आप अपने दिल और जान लगाकर बैठे हैं। जी हाँ, आज हम आपको सुरुचि में बताएंगे कि बंगाली व्यंजनों में सबसे अधिक प्रसिद्ध आम भापा दोई के बारे में। एक बहुत ही खास श्रेणी है और ये

बहुत ही ज्यादा लोगों को बहुत पसंद आती है। दोस्तों, आम भापादोई और आम तोल क्या है? वैसे गर्मियों का मौसम है और आम की तो बरसात हो ही रही है, लेकिन दोस्तों गानों की भी बरसात होनी चाहिए। तो आइए हम आपको गानों के साथ इस रेसिपी के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, सुरुचि में हम आज आपके लिए लाए हैं आम भापा दोई और आम तोल के बारे में जानने के लिए। दोस्तों सुरुचि में जो हम आपको रेसिपी बताते हैं वो सच में ही बहुत ही अच्छे होते हैं। वैसे आज हम आपके लिए लाए हैं आम भापा दोई। दोस्तों बंगाली संस्कृति में जो आम भापा दोई और आम तोल यानी कि आम सोट केवल एक व्यंजन नहीं है बल्कि परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, एक संस्कृति, एक कल्चर की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि आप इसके उपयोग के बहुत सारे कारणों से आप परिचित हो पाएंगे। वैसे ये व्यंजन दोस्तों विशेष रूप से गर्मियों में बनाया जाता है जब ताजे और मीठे आमों का सीजन होता है। जैसे कि अभी मौसम है, मई महीना का चल रहा है और जो ब्यार है यानी कि आम के फलों में, आम की जो वृक्ष है उसमें ब्यार लगे हुए हैं, मोटे मोटे आम दिख रहे हैं, थोड़े कच्चे थोड़े से पके हुए यानी कि अधकच्चे, लेकिन ये आम का सीजन है और इसी सीजनों में ये आम भापा दोई बनाने की जो विशेष संस्कृति है बंगाल में।

जो ब्यार है यानी कि आम के फलों में, आम की जो वृक्ष है उसमें ब्यार लगे हुए हैं, मोटे मोटे आम दिख रहे हैं, थोड़े कच्चे, थोड़े से पके हुए यानी कि अधकच्चे, लेकिन ये आम का सीजन है और इसी सीजनों में ये आम भापादोई बनाने की जो विशेष संस्कृति है बंगाल में वो काबिले तारीफ है। वैसे दोस्तों इस व्यंजन की विशेष रूप से गर्मियों में ही बनाने की प्रकृति है। वैसे दुर्गा पूजा और पूजा, दुर्गा पूजा के 10 दिनों के दौरान ये उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा भी होता है और इसे अक्सर मिष्टी मुख यानी कि मुंह मीठा करने के रूप में माँ दुर्गा को भोग भी लगाया जाता है। दोस्तों इसी चीज को पहला बैशाख में भी नए साल की शुरुआत में मेहमानों का स्वागत करने और शुभ मारों में इसे एक मेक अहेड यानी कि पहले से बनाकर रखे जाने वाली मिठाई के रूप में भी बहुत पसंद किया जाता है। आज हम इसी स्वादिष्ट और पारंपरिक जो विधि है, ये खास जो हमारा आज का खास रेसिपी है, इसे हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद आइए सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही खास व्यंजन के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, आम भापा दोए। दोस्तों वैसे तो दुर्गा पूजा, पोइला बैशाख, शादी ब्याह, जमाई षोष्ठी और विशेष पारिवारिक दावतों में इस खास व्यंजन का उपयोग होता है। तो चलिए हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और आपको आपके अनुसार आधार सामग्री हम बताएंगे। वैसे दोस्तों इसे बनाने के लिए एक काढ़ा दही लेना पड़ता है, 1 से 1.5 कप दही, कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं 1 कप, और इलायची पाउडर 1/2 चम्मच। इसे कढ़ाई में या फिर पारंपरिक तरीका से बनाने के लिए आप स्टीमर या फिर कढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं, या ओवन में बेकिंग के तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव में सबसे तेज तरीका के अनुसार भी बना सकते हैं। हम आपको तीनों तरीके बताएंगे। आपको सबसे पहले पारंपरिक जो तरीका है वो बताती हूँ। स्टीमर या फिर कढ़ाई में बनाने के लिए आपको इसमें सबसे प्रमाणिक तरीका है जिसमें जो है दही मखमली बनता है। क्या करना है आपको, एक गहरे बर्तन या फिर कढ़ाई में 2 कप पानी डालना है और बीच में एक स्टैंड रखना है। तैयार मिश्रण को एक स्टील के डिब्बे में डालना है और उसे एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि जो भाप की बूंद है वो अंदर नहीं गिरे, और इसका समय रखना है मध्यम आंच पर 20 से 25 मिनट तक उसको स्टीम करने दे। अब हम आपको ओवन में बेकिंग का तरीके से बताएंगे। इसे आप वाटर बाथ यानी कि ब्रेन मैरी तकनीक से बनाया जाता है जिससे वह बिल्कुल चीज़ केक जैसा लगता है। आप इसे ओवन को 180 डिग्री सी पर सेंटीग्रेड पर प्री हीट करें। एक बेकिंग डिश में दही का मिश्रण डालें। अब एक बड़ी बेकिंग ट्रे में गर्म पानी भरें और दही वाली डिश को उस पानी के बीच में रखें और फिर 30 या फिर 35 मिनट तक उसको बेक कर लें। अब हम आपको बताएंगे माइक्रोवेव में सबसे तेज तरीका इसको बनाने का क्या है। अगर आपके पास समय कम है तो ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। वैसे माइक्रोवेव से बाउल में मिश्रण आपको डालना है, इसे बिना ढके या फिर हल्का ढक कर रखना है और इसे केवल 5 से 7 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। 5 मिनट के बाद इसे चेक करना है, अगर बीच से थोड़ा हिल रहा है तो 1-2 मिनट और भी इसको चलाना है। आपको हम जरूरी टिप्स भी बताएंगे। आप चाहे किसी भी तरीके से बनाएं, पकने के तुरंत बाद इसे ना खाएं, इसे बाहर निकालकर पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने दीजिए। इसके बाद इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज

रखने से ही इसमें असली भापा यानी कि जमा हुआ टेक्सचर आता है, और या फिर आप इसे बिना कंडेंस मिल्क के यानी चीनी या गुड़ के साथ बनाने का अनुपात जानेंगे तो भी हम उसे बताएंगे, लेकिन हम आपको ये गीत सुना देते हैं। आइए सुनते हैं नैना गीत मोहित चौहान और मोनाली ठाकुर के आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर 1008 किलो हर्ट्स पर आप आकाशवाणी संचेता का चैनल उर्वशी और कार्यक्रम चल रहा है रिंकू के साथ। आप सुन रहे हैं दोस्तों, मैं सुरुचि में बता रही हूँ आपको आम दोई यानी कि आम भापा दोई और आम तोल के बारे में। वैसे दोस्तों आपको आम भापा दोई बनाने के लिए बहुत सारी सजावटों की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे तो गाढ़ा दही, आम का पल्प और कंडेंस मिल्क के साथ इलायची पाउडर और केसर और पिस्ता का सजावट के लिए आपको उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप आम भापा दोई बनाने की परफेक्ट रेसिपी को ढूंढ रहे हैं तो यहाँ इसकी सबसे आसान विधि हम बताएंगे। आपको यही सब सामग्री लेनी है और उसके बाद एक मिश्रण तैयार करना है। एक बड़े मिक्सिंग बाउल में गाढ़ा दही लीजिए और इसे आपको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि कोई उसमें गांठ ना पड़े। अब इसमें कंडेंस मिल्क और आम का पल्प को मिलाएं। इसे तब तक फेंटिए जब तक कि एक मखमली यानी कि स्मूथ पेस्ट ना बन जाए और अंत में इसमें इलायची का पाउडर भी डालने के बाद आपको एक बर्तन में इसको तैयार करना है। यानी कैसे तैयार करेंगे, एक स्टील की टिफिन या फिर केक टीन को थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लीजिए। तैयार मिश्रण को इसमें डालें और बर्तन को धीरे से थपथपाना भी है ताकि हवा के बिल्कुल हवा जो है थोड़ा बहुत भी रहे उसके बुलबुले बिल्कुल निकल जाए। और उसके बाद बर्तन के मुंह को एल्युमिनियम फॉइल से पूरी तरह से सील कर देना है। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि भाप का जो पानी है दही के अंदर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद एक कढ़ाई या फिर पतीले में 2 ग्लास पानी को गर्म करना है। बीच में एक स्टैंड रखना है। जब पानी उबलने लगे तो टिफिन को सावधानी से स्टैंड पर रखें और फिर ढक्कन लगाकर 20-25 मिनट तक मध्यम आंच पर उसको पकने दीजिए। फिर गैस बंद कर दीजिए और बर्तन को बाहर निकाल लीजिए। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और इसे गर्म में ना खोले वरना ये टूटने लगेगा। और जब ये पूरी तरह से सेट हो जाए तो चाकू से किनारों को छुड़ाए और एक प्लेट पर पलट दे। ऊपर से केसर और कटे हुए पिस्ते को सजाकर इसे ठंडा ठंडा परोसिए। इसके बाद ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके लिए अच्छी टिप्स ये है कि अच्छे रंग और स्वाद के लिए अल्फोंजो यानी कि हापूज या फिर दशहरी आम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप पीसी हुई चीनी या फिर थोड़ा मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं। ये आपको बहुत ही सुंदर स्वाद देगा। और इसके साथ दोस्तों जो मैंने कहा था कि आम तोल यानी कि आम सोट का उपयोग अक्सर त्योहारों के दौरान चटनी बनाने में किया जाता है जो बंगाली भोग या फिर दावत का एक मुख्य हिस्सा होता है। इसकी जो विशेष है ये को बहुत ही खास होती है और सच में ये बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों इसी के साथ आपको मैं एक गीत के साथ छोड़े जाती हूँ क्योंकि समय यहाँ पर हो चुका है 5:52, लेकिन ये गीत है आपके लिए और सुरुचि में हम आपके साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक ये गीत सुनिए और रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers,

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पे दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त कार्यक्रम है हिंदी वार्ता का। दोस्तों मीडियम वेव 297.1008 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है और अभी हिंदी वार्ता में आप सुनेंगे कार्यक्रम मानव सेवा और आपदा परिवहन के बारे में। दोस्तों मानव सेवा और आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपदाओं के खतरों को कम करना और संकट के प्रभावों और साथ में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना। इसमें मुख्य रूप से चार चरण शामिल होते हैं, शमन यानी कि आपदा के जोखिम और प्रभाव को कम करने के

लिए दीर्घकालिक उपाय करना और तैयारी के रूप में आपदा आने से पहले योजना बनाना और प्रशिक्षण देना। दोस्तों, प्रतिक्रिया आपदा की तुरंत बाद बचाव और राहत कार्य करने में भी उसकी प्राप्ति होती है और पुनः प्राप्ति के प्रभाव क्षेत्र और लोगों के जीवन को सामान्य स्थिति में वापस लाना। साथ में आपदा प्रबंधन यानी कि जो क्या है, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया और या फिर पुनः प्राप्ति के उद्देश्य से आपदाओं को, खतराओं को कम करने में और संकट के समय प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में ये प्रभावशाली है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें मुख्य रूप से चार चरण शामिल हो सकते हैं। आपदा के जोखिम और प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपाय करना और आपदा आने से पहले योजना बनाना और प्रशिक्षण देना, साथ ही आपदा के तुरंत बाद बचाव और राहत कार्य में अपना योगदान देना। इसके साथ पुनः प्राप्ति ये होनी चाहिए कि प्रभावित क्षेत्र और लोगों के जीवन को सामान्य स्थिति में वापस लाना भी। इसके साथ मानव सेवा का जो महत्व है, आपदा के दौरान मानवीय सहायता का उद्देश्य केवल बचाव ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमा को बनाए रखने में भी है। इसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल होनी चाहिए। बुनियादी आवश्यकताएं, प्रभावित लोगों को सुरक्षित आवास, भोजन, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि घायलों को चिकित्सा सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देना और अधिकारों की रक्षा, ये सुनिश्चित करना कि राहत कार्यों के दौरान बच्चे, महिलाओं और बुजुर्ग के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। साथ ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में प्रमुख संस्थाएं यानी कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत स्थानागत ढांचा तैयार किया जाए, जैसे कि NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करने वाली शीर्ष संस्था है। इसके साथ NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये आपदा के समय जमीनी स्तर पर बचाव कार्य करने वाली समर्पित बल भी है, जिसकी NDRF भी कहा जाता है। और साथ ही आवश्यक यानी कि स्वयंसेवक, भारतीय रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं और स्थानीय स्वयंसेवक राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और आपदा को समाप्त करने में मानव सहायता और आपदा राहत कल्याणकारी कार्यक्रम भी होते हैं, जिसके अनुसार ऐसे कार्यक्रमों में हमें आपदा के नियमों को उल्लंघन ना करते हुए हर तरह से संस्था को सम्मान भी करना चाहिए। वैसे अगर कहा जाए कि हमारी जो संस्था की हर तरह की प्रावधिकता दी जाती है वो एक तरह से सुयोग्य और सहायता, आपदा राहत और तात्पर्य प्राकृतिक आपदाओं के मानवीय संकटों या फिर बड़े पैमाने पर आपत स्थितियों से निपटने के लिए एक समन्वित नागरिक सैन्य देने की एक जरूरी सेवा प्रदान की जाती है। वैसे हमारे आपदा संस्थानों में हर तरह के क्षेत्रों को, हर तरह के समाप्तों को भी ये घोषणा करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया जाता है। कहने के लिए तात्पर्य यह है कि NGO और स्वयंसेवक, भारतीय रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं स्वयंसेवक राहत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस तरह की भूमिका निभाने वाले साहित्यकार जैसे आपदाओं से बचने का पूरा काम करते हैं। वैसे तो जब आपदा आती है तो सही जानकारी ही जान बचा सकती है। भारत में प्रमुख आपदाओं के समय अपनाए जाने वाले आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बचाव या फिर उपाय बता सकते हैं। जैसे हमारी आपदाएं आती है भूकंप, यानी कि भूकंप के समय झुके, ढके और पकड़े। यदि कि आप अंदर हैं तो एक मजबूत मेज के नीचे छिप जाए और उसे कसकर पकड़े। बाहर निकलने की कोशिश करें, यदि संभव हो तो तुरंत खुले मैदान में जाए। इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें। लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। भूकंप के दौरान हमेशा सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। भूकंप ऐप या फिर भूकंप ऐप जैसी बहुत सारी वास्तविक समय की जानकारी के लिए सरकारों द्वारा जारी एक भूकंप ऐप है, उसका भी उपयोग करना आवश्यक है। अब भूकंप के बाद एक और आपदा, प्राकृतिक आपदा है, वो है बाढ़ की। बाढ़ के समय में किसी हमेशा ऊंचाई जगह पर जाने पर ही आपदा से छुटकारा पाया जा सकता है। पानी बढ़ने पर तुरंत अपने घर की ऊपरी मंजिल या किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाने की कोशिश करें। बिजली और गैस बंद कर दे। बिजली के झटके या आंख से बचने के लिए मुख्य स्विच या गैस बल्ब बंद कर देना चाहिए।
पानी में ना चले, बहते पानी में चलने या गाड़ी चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केवल 6 इंच गहरा पानी भी

0: आपको गिरा सकता है। इस आपदा से सावधानी पूर्वक बचने के लिए बाढ़ के बाद साफ पानी का ही सेवन करें और बिजली के गीले उपकरणों को बिल्कुल भी नहीं छुए। तीसरी आपदा आती है चक्रवात की, यानी कि साइक्लोन की। इस समय आपदा के लिए चेतावनी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम रेडियो या टीवी सुनते हैं तो रेडियो या टीवी पर मौसम विभाग यानी कि IMD की चेतावनियों को हमें लगातार सुनते रहना चाहिए और सुरक्षित आश्रय यानी कि साइक्लोन शेल्टर, यदि आपका घर कच्चा है तो सरकार द्वारा बनाए गए मल्टीपर्पज चक्रवात आश्रयों में शरण लेना चाहिए। और साथ ही इमरजेंसी किट, अपने पास एक टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, प्राथमिकता चिकित्सा किट, सूखे खाद्य पदार्थों और स्वच्छ पेयजल तैयार रखना चाहिए। ये NDMA के श्रेणी में आता है। इसके साथ ही एक और आपदा है स्वयं सेवकों की भूमिका, यानी कि आपदा मित्र। भारत सरकार ने आपदा मित्र योजना के तहत लाखों सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया है, जो संकट के समय स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव कार्य में मदद करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र के लिए विशिष्ट आपदा भोजन या फिर आपातकालीन किट बनाने के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये आराम से आप जान सकते हैं, जिसके कारण आपको आपदा से बचने और आपातकालीन किट से आपदा के पहले कुछ घंटों या फिर दिनों में आपकी जान भी बचाई जा सकती है। इसे एक वाटरप्रूफ बैग में रखें और ऐसी जगह रखें जहां से इसे आसानी से उठाया जा सकता है। यहां उन जरूरी चीजों की सूची हम आपको बताएंगे जो आपके लिए जरूरी होनी चाहिए या फिर किट में होनी चाहिए, जैसे कि जीवन रक्षक जरूरतें क्या होती हैं, बेसिक इंसेक्टाइल पानी ये जरूरी चीज है, प्रति व्यक्ति कम से कम 3 लीटर पानी 3 दिनों के लिए तो जमा करना चाहिए, भोजन ना खराब होने वाला खाना जैसे बिस्कुट, चिवड़ा, सत्तू, सूखे मेवे या फिर डिब्बा बंद भोजन इसकी जरूरत होती है, रोशनी, एक अच्छी टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां यानी कि मोमबत्ती के बजाय टॉर्च ज्यादा सुरक्षित है, इसे आप अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि फर्स्ट एड किट यानी कि पट्टियां, एंटीसेप्टिक लिक्विड, डेटॉल जैसी चीजें आपके पास होना अत्यंत आवश्यक है, दर्द निवारक दवाएं और आपकी नियमित दवा, स्वच्छता पूर्वक सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और सैनिटरी पैड का भी होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको आपदा में महत्वपूर्ण उपकरण जैसे कि पोर्टेबल रेडियो, आपदा के समय मोबाइल नेटवर्क जाम हो सकते हैं, ऐसे में समाचारों के लिए बैटरी वाला रेडियो सबसे अच्छा होता है, पावर बैंक, मोबाइल चार्ज रखने के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है, और एक सीटी यानी कि विसल, यदि आप कहीं फंस जाते हैं तो मदद बुलाने के लिए सीटी का शोर चिल्लाने से ज्यादा कारगर होता है। दस्तावेज और नकदी, जरूरी दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड, बीमा पेपर और बैंक की जानकारी की फोटोकॉपी एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक जिप बैग में रखें। नकदी आपदा के समय ATM काम नहीं करते, इसलिए कुछ नकदी कैश जरूरी रखनी चाहिए। इसके साथ ही बाढ़ के लिए लाइफ जैकेट, हवा भरने वाले ट्यूब और भूकंप के लिए हेलमेट या सिर बचाने के लिए कोई मजबूत चीज, चक्रवात के लिए खिड़की को सील करें और टेप और रस्सी तैयार करें। यहाँ दोस्तों हिंदी वार्ता में बस इतना ही। आप सुन रहे थे आपदा मानव सेवा और आपदा प्रबंधन। इसी के साथ इस वार्ता कार्यक्रम से रिंकू को इजाजत दीजिए। हम आपको याद दिला दें कि आप सुन रहे थे 1997.6 मीटर 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिम बंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। DRDO तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्। अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा सांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व उपांत्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता

0: काम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवनचक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधि दलस्य प्रमुखान संबोधयनासीत।
0: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृहे LPG इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरणसंस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
2: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, PNG कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
1: आकाशवाण्या स्वीय 90वें वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, RBI भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः CEO गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
3: जी हाँ, 297.6 मीटर, 1008 किलोहर्ट्ज़ पर दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं 6:30 और आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो है गुलगुलशन का कार्यक्रम। चलिए दोस्तों बिल्कुल देरी ना करते हुए सुनते हैं गुलगुलशन कार्यक्रम। दोस्तों गुलगुलशन कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं कि आज की शाम हम गुलगुलशन के नाम कहते हैं। कहते हैं कि फूल तो बहुत खिलते हैं चमन में, पर जिस गुलशन में सुरों की खुशबू हो वहां रूह को सुकून मिलता है। आज हम लोकगीतों की मिट्टी की महक से लेकर कव्वाली की रूहानी उड़ान और गजल की नजाकत तक का सफर तय करेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म अभिमान से।

आंखों में नमी और दिल में तेरा नाम रहता है, इन धड़कनों में बस तेरा ही काम रहता है। आंचलों के जरिए अपना हाले दिल कहेंगे, क्योंकि हर हसीन नगमे में तेरा ही तो पैगाम रहता है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिमान से आप ये गीत सुन रहे थे। अब गीतों गजलों का कार्यक्रम चल रहा है, गुलगुलशनों की महक तो दूरों से हो रही है। चले रोमांटिक गानों और प्यार भरे नगमों की

जी हाँ दोस्तों, वो बीत गए लम्हे जो पुरानी बातें हैं, वो अधूरे सपने और वो अधूरी बातें हैं। आंखों से पानी नहीं आज दर्द बरसा है, क्योंकि यादों के सावन में फिर से ये दिल तड़पा है। दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म महबूबा से, और किशोर कुमार का ये दर्द आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुंच रहा था। गुलगुलशन का कार्यक्रम चल रहा है, आप समझ रहे हैं, रिंकू आपके साथ है और सुनाई देती है आपको एक और गीत फिल्म चुपके चुपके से।

जी हाँ दोस्तों, पास आओ तो तुम्हें अपनी धड़कन सुनाए, सुरों के धागों में तुम्हें कैसे पिरोएं। आज गानों की इस बारिश में भींग जाने का बहुत मन है, चलो मोहब्बत की दुनिया की आपको हम सैर कराएं। वैसे दोस्तों, अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब बात इश्क की होती है, इसलिए तो कुदरत के ये नए सुरीले नगमे बनाए गए हैं हम गुलगुलशन में आपके लिए लाए हैं और आपको सुनाने। चलिए, ये जो गानों की मिठास है ना, ये और कुछ नहीं, बस किसी की यादों का मीठा सा एहसास है। लेकिन इन यादों के बीच में अगर हम अपने ज़िंदगी के सफ़रनामे में इन सब बातों को पीछे छोड़ जाते हैं और मोहब्बत को तोड़ जाते हैं, तो फिर कुछ नया खास पैदा होता है। आइए सुनते हैं हम एक और गीत इसके आपकी कसम फिल्म से, आनंद बख्शी और आर डी बर्मन के लिखे बोल के साथ।

दुनिया समझती है कि ये बस आंखों का पानी है, पर सच तो ये है कि ये एक अधूरी प्रेम कहानी है। सुनिए ये गीतों का नगमा जो रूह को छू ले, और हम आपको सीधे लिए चलते हैं ऐसे रूह के नगमे के साथ जिसे आप शब्दों से नहीं बल्कि आंसुओं से लिखते हैं। दोस्तों, ऐसी घटाओ गुलगुलशन का कार्यक्रम रिंकू का साथ, तो सदाबहार विरह के गीत मंच पर हम आपके लिए यूं ही बजाते रहेंगे। आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म अनामिका से।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म अनामिका से ये गीत। दोस्तों, गुलगुलशन का कार्यक्रम चल रहा है और इन गीतों के बीच में हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम के साथ पेश करते हैं। वैसे तो स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि मुझे अब इजाजत लेनी चाहिए, क्योंकि यादों का ये एक हसीन गुलदस्ता सजाकर हम लेके आए थे आपके पास और सुरों की शाम अपने दिल में बसाकर ले जा रहे हैं। दोस्तों, बिछड़ना तो दस्तूर है इस दुनिया का, पर हम फिर भी मिलने का वादा दोहराकर लेकर आएंगे फिर से। और इसी के साथ रिंकू को इजाजत दीजिए गुलगुलशन कार्यक्रम से, क्योंकि दोस्तों अगले अंक पे हम आपको 7 बजे फिर मिलेंगे आपके साथ दर्पण कार्यक्रम में। इसके साथ रिंकू को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: मेरी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक

0: शनिवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Senior BJP leader Subendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with a host of union ministers and several chief ministers from BJP-ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has sought support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, both having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. Our correspondent reports, VCK

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचित चैनल। इस वक्त कार्यक्रम है दर्पण का और लेकर हाजिर हूं मैं रिंकू। दोस्तों दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले एक नजर, और एक नजर में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर। दोस्तों एक नजर में आज हम बात करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस के ऊपर में। जी हाँ, हर साल 8 मई को मनाया जाता है ये विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये दिन मानवता, करुणा और सेवा की भावना को समर्पित है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में आपदा, युद्ध या फिर महामारी के समय निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं और सेवक के योगदान को सम्मानित करना है। इसका इतिहास अगर हम जाने तो ये तारीख जिन हेनरी ड्यूनेट यानी कि उनकी जयंती पर इनका इतिहास है, जिन्होंने सन 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी कि ICRC की स्थापना की थी। वे शांति का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। आधिकारिक तौर पर पहला विश्व रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनाया जाता है।

वर्ष 2026 की थीम इस वर्ष की मानवता को जीवित रखना है। ये ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी है। ये थीम युद्ध और आपदाओं के बीच मानवीय करुणा के महत्व पर जोर देती है। ये संस्था बिना किसी भेदभाव के इन सिद्धांतों पर काम करती है, मानवता यानी कि पीड़ा को कम करना और जीवन की रक्षा करना। निष्पक्षता, जाति धर्म या फिर राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करना। तटस्थता, विवादों में किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना। स्वतंत्रता, स्वायत्तता बनाए रखना। स्वैच्छिक सेवा, निस्वार्थ मदद करना। एकता, एक देश में एक ही सोसाइटी। और सार्वभौमिकता यानी कि दुनिया भर में समान जिम्मेदारी। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी और रेड क्रॉस सोसाइटी के इतिहास या फिर रक्तदान शिविरों के जैसी गतिविधियों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो 8 मई को इसे रखा गया था।

दोस्तों, अब हम आपको दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत लिए चलते हैं दूसरी पायदान की ओर। सुनते हैं विधि विधान और समाधान। विधि विधान और समाधान में आज हम बात करेंगे धारा 279 ऑफ बीएनएस यानी कि फॉर रैश ड्राइविंग के बारे में। दोस्तों, विधि विधान और समाधान में आज हम जानते हैं धारा 279 भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 279 मुख्य रूप से लापरवाही से वाहन चलाने यानी कि रैश ड्राइविंग से संबंधित है। अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत भी इसके प्रावधान समान है। यहाँ इसका विधि विधान और समाधान आसान शब्दों में हम कर रहे हैं कि धारा 279 क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मार्ग यानी कि पब्लिक वे पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है जिससे मानव का जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने या घायल होने की संभावना हो, तो उस पर धारा 279 लगाई जाती है। इसके मुख्य तत्व ये होने चाहिए कि वाहन किसी सार्वजनिक रास्ते पर चलाया जा रहा हो, वाहन चलाने का तरीका अत्यंत तेज या फिर रैश या फिर लापरवाह हो, उस कार्य से दूसरों की जान को खतरा पैदा हुआ हो, और सजा का प्रावधान। ये एक जमानती और संज्ञेय अपराध है। इसकी सजा 6 महीने तक की जेल हो सकती है और जुर्माना 1,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। और इसका समाधान यह है कि यदि किसी पर यह धारा लगी है तो फिर समाधान के लिए निम्नलिखित कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, वो इस प्रकार है। अगर ये धारा किसी पर लगी है तो उसके समाधान इस प्रकार हो सकते हैं। इसके लिए आपको जमानत यानी कि बेल लेना पड़ेगा। क्योंकि ये एक जमानती अपराध है, इसलिए थाने या फिर अदालत से आसानी से जमानत मिल जाती है। इसके लिए एक वकील के माध्यम से बेल बॉन्ड भरना होता है या फिर साक्ष्यों की जांच यानी कि एविडेंस, ये साबित करना कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था। यदि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है या फिर सीसीटीवी फुटेज में लापरवाही नहीं दिखती है तो आरोपी बरी हो सकता है। इसके साथ ही एक समझौता के तौर पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। यदि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है तो पीड़ित पक्ष के साथ अदालत की अनुमति से आपसी समझौता करने का प्रयास किया जा सकता है जिससे केस जल्दी खत्म हो जाता है। और वकील की सलाह ये होनी चाहिए कि एक अच्छा आपराधिक वकील एफआईआर की कमियों को उजागर कर सकता है, जैसे कि क्या रास्ता वास्तव में सार्वजनिक

लिख था या केवल तेज गति को लापरवाही माना जा सकता है। यदि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो धारा 279 की धारा या फिर साथ ही धारा 304A जब BNH की संबंधित धारा भी लगाई जाती है तो बहुत अधिक गंभीर है। तो इसे आप इस धारा से जुड़े किसी विशेष मामले या फिर FIR के बारे में कानूनी सलाह लेना कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई विशेष केस या फिर FIR की जानकारी है तो आप जो विवरण हम साझा कर रहे हैं उसे आप बेहतर सलाह देकर पढ़ें। क्या दुर्घटना में किसी को चोट आई है? अगर चोट आई है तो धारा 337 या फिर 338 भी साथ में लगी होगी। क्या फिर FIR दर्ज हो चुकी है? क्या पुलिस ने गाड़ी जब्त की है? जमानत, चूंकि ये जमानती अपराध है इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट से या थाने से मुचलका भरकर जमानत ले सकते हैं। अगर पुलिस ने गाड़ी जब्त की है तो वकील के जरिए कोर्ट में सुपरदारी की अर्जी लगानी होगी ताकि आपको अपनी गाड़ी वापस मिल सके। वैसे आप CCTV गवाह, यदि आप निर्दोष हैं तो घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज या फिर गवाहों के बयान जुटाएं जो ये साबित कर सके कि गलती आपकी नहीं है।

वैसे दोस्तों घटना क्या हुई है या फिर केवल गाड़ी की टक्कर हुई है, किसी को भी चोट आई है, क्या पुलिस ने आपको नोटिस दिया है या फिर गिरफ्तार किया है, क्या आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस था, अब घटना का पूरा विवरण लिखे ताकि आपको हम कानूनी विकल्प के साथ जरूर बताएं।

तो दोस्तों 279 की धारा ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक मार्ग पर इतनी तेजी से लापरवाही से वाहन चलाता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने या घायल होने की संभावना हो तो उस पर यह धारा लगती है। दोस्तों विधि विधान और समाधान में आज तक के लिए इतना ही। हम अगले अंक में आपके साथ फिर से मिलेंगे।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू को फिल्म बाजीगर से। लेकिन चलिए अभी सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, और जिसके साथ हम आपको लिए चल रहे हैं ऐसे ही उन यादों के गलियारों में जो आप सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं इस गीत को।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये गीत और फिल्म साजन का था और माधुरी दीक्षित की आवाज में गा रही थी अलका याग्निक। वैसे दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि मीडियम वेव 297.6 मीटर 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी संचेत का ये कल कार्यक्रम दर्पण और रिंकू के साथ। लेकिन दोस्तों स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि अभी दर्पण कार्यक्रम से मुझे भी चलने की इजाजत मांगनी चाहिए। तो दोस्तों देरी ना करते हुए सुना देती हूँ आपको अगला गीत। इस गीत को सुनते सुनते रिंकू को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व

0: के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार

0: हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था

0: निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94.48 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VCK IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Current Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program Current Affairs. I'm Tina Jha. Today we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padma Shri Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience, attacked, rebuilt and revived time and again. Its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. तो पहला सवाल हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी से. पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है.
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी हैं, वर्षों से है, आज से नहीं. और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं. उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है. बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया. कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
2: जी,
1: 5,000 साल पहले का है. 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया. सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर्, केवल राजाओं ने

0: मंदिरों पर को भी नष्ट किया था, लेकिन सोमनाथ ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। विनाश से निर्माण मैंने कहा, वो उस आधार पर वो खड़ा है, और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, गुजरात विशेष हो जाएगा। और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई, ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था, ये बात सही है। और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंची। और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा, उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई देवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
1: जी।
0: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे, लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया। और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें, जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूं, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, ये देश की संस्कृति है साहब। और आए, और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ, तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
1: जी।
0: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ, और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
1: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है, और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें, तो सोमनाथ से वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियो पॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहां शांति होगी या नहीं होगा, वहां युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारत वर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहां भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है, आज तो वहां देश देशावर से लोग जाते हैं, तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं।
1: रीसेंट टाइम्स एज यू लाइक राइटली मेंशनड, गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच एज वेल एज द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट हैव बीन अंडरटेकन इन रीसेंट इयर्स, वी डू सी दैट देयर इज अ रिन्यूड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस अबाउट देयर नेशनल आइडेंटिटी, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर रूट्स। And we are also projecting our heritage globally through yoga, through Buddhism, through spirituality. Do you also see Somnath as part of that larger story in helping India project its cultural heritage?

0: it's civilizational on the global stage?
1: Yeah, in fact, it's very interesting with the question that you asked, the fact that the Somnath Temple is located in Gujarat, and also the fact that Gujaratis are very vibrant diaspora members and they are brand ambassadors of the Indian story outside. And you spoke of soft power, of course, not just the Somnath Temple, but so many other rejuvenated temple complexes in the country. You can take the Chardham Yatra, then you can take Kashi Vishwanath Temple, which has been redone fully. And in fact, if you look at the statistics, you will realize, Tina, that not just domestic tourism has been boosted through this religious rejuvenation, but a lot of international tourists are also coming back. You know, a lot of Indians only live abroad who are now coming back to revisit these places of worship, all these religious shrines. Okay. So that's one very important thing. And of course, Somnath Temple is part of the larger soft power segment of India. Our rich and ancient civilization, our democratic values, and our growing global influence through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time.
0: Right.
1: So, you know, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion. It's food. You know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
0: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist, or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
1: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians, as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much, and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength, and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
0: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें?
2: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात. दूसरी बात यह है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए. दूसरी बात. तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब हो कर सकते हैं. हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए. फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतीकरण हो, तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूँ तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए.
0: जी.
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए. ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है. तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है. साहब, सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, चार सभ्यताएं, सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए. और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती है.
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम इस जगह के बारे में

0: পরিস্থিতি সত্ত্বেও এলপিজির দাম যাতে স্থিতিশীল রাখে তা সুনিশ্চিত করতে সরকার একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশে আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 165তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং মানবতাবাদী চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথের চিরস্থায়ী অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেদেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে সেদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রক 3 দিনব্যাপী জাতীয় কর্মসূচির আয়োজন করেছে। আগামীকাল 25শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কবি প্রণামের আয়োজন করা হয়েছে। সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত থাকবেন কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীরা। এছাড়াও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও রথীন্দ্র মঞ্চে সকালে বরাবরের মতো কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত থাকবেন বহু শিল্পী ও রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ। ভারতের সিমরনজিৎ কৌর তীরন্দাজিতে বিশ্বকাপ স্টেজ টু প্রতিযোগিতায় মহিলাদের রিকার্ভ ব্যক্তিগত বিভাগে সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। চীনে আজ তিনি চীনা তাইপেয়ের ফং ইউজুকে 6-0 হারিয়ে দেন। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকার আগামীকাল শপথ নেবে। নবনির্বাচিত এই সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। এনআইএর হাতে থাকা মামলা বকেয়ার 10 থেকে 15টি শুনানি সম্পন্ন করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট অন্ততপক্ষে একটি বিশেষ আদালত তৈরির।
1: ডুকোনা জ্বালামুখী কে ফটনে সে 3 লোগোঁ কি মৌত। তীরন্দাজি মে সিমরনজিৎ কৌর সাংঘাই মে বিশ্বকাপ কে দূসরে চরণ মে মহিলা রিকার্ভ স্পর্ধা কে সেমিফাইনাল মে পৌঁছি। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्यसमूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्यसमूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। समूह ने पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले आतंकी घटना की भी निंदा की। भारत और सिंगापुर ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के साथ संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अस्थिर दुनिया में इन संबंधों का उपयोग करके दोनों देशों के लिए शक्ति और स्थिरता का स्तंभ बनना चाहिए। त्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग 2 गुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। ये व्हाइट हाउस की व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। एक रिपोर्ट।
2: रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने 2-1 के विभाजित फैसले में कहा कि प्रशासन 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत शुल्क को उचित ठहराने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि सरकार कानून के तहत आवश्यक गंभीर भुगतान संतुलन संकट को साबित नहीं कर पाई। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए आयात शुल्कों के व्यापक सेट को अमान्य घोषित कर दिया गया। धारा 122 के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में कांग्रेस की मंजूरी के बिना 15% तक शुल्क लगा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना ना करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश

0: सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार ना हो। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने बताया कि अमरीका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में रात भर चले सैन्य तनाव के बाद नाजुक संघर्ष विराम पर दबाव पड़ गया है। अमेरिका की सेना ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से उसके नौसैनिक बलों पर हमले हुए। अमेरिकी नौसेना ने इसका जवाब दिया। 3 अमेरिकी नौसेना विध्वंसक पोत हमले के बीच सफलतापूर्वक जलडमरू मध्य से गुजर गए। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि अमेरिकी सेना ने हमलावरों को भारी क्षति पहुंचाई। वॉशिंगटन का कहना है कि प्रस्तावित शांति ढांचे पर तेहरान की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए संघर्ष विराम तकनीकी रूप से अभी भी लागू है। ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिकी बलों ने तटीय जल क्षेत्र में एक ईरानी तेल टैंकर और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह के पास एक दूसरे जहाज को निशाना बनाया। रणनीतिक केशम द्वीप और बंदर अब्बास के पास भी विस्फोटों की सूचना मिली है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने शत्रुतापूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सरकार समाचार एजेंसी के अनुसार तेहरान के ऊपर ईरानी हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल ने विस्फोट के बाद लापता हुए 20 पर्वतरोहियों के समूह में शामिल सभी जीवित लोगों का पता लगा लिया है। पुलिस के अनुसार 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि पर्वतरोह पर प्रतिबंध के बावजूद ये समूह ज्वालामुखी पर चढ़ाई कर रहा था। डुकोनो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो पर्वतरोहियों और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ब्रिटेन सरकार के अनुसार क्रूज जहाज एमवी होडियंस पर हुए हंता वायरस के प्रकोप से तीसरे ब्रिटिश नागरिक में भी संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए हैं। मरीज अटलांटिक महासागर के सुदूर द्वीप त्रिस्टन दा कुन्हा में है। इस संक्रमण की पुष्टि 2 अन्य ब्रिटिश पुरुषों में भी हुई है। अब तक हंता वायरस के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें क्रूज पर सवार 3 यात्रियों में से एक की मौत भी शामिल है। बुल्गारिया की संसद ने रुमेन रादोव को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। यह फैसला देश में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए लिया गया। 62 वर्षीय श्री रादोव इससे पहले राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। श्री रादोव ने अपने दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने से कुछ महीने पहले इस वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ये बातचीत रूबियो की इटली और वेटिकन की 2 दिवसीय यात्रा के बाद हुई, जब अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने ईरान में अमेरिका इसराइल युद्ध को लेकर हफ्तों से जारी तनाव के बाद इटली और वेटिकन में 2 दिनों की चली सुलह वार्ता को समाप्त किया। श्रीलंका के पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर अजीत निवार्ड कैबराल के खिलाफ कोलंबो उच्च न्यायालय में एक मामला फिर से दायर किया गया है। श्री कैबराल पर आरोप है कि उन्होंने अदालत के उस आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें उन्हें 3 महीने के भीतर 10 करोड़ रुपए जमा करने थे। CIABOC ने कहा है कि यह मामला श्रीलंका के भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा 67(5) के अंतर्गत विवादास्पद ग्रीन बॉन्ड निवेश के मामले में संबंध फिर से दायर किया गया है। बांग्लादेश में आज नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में साहित्य, संगीत और मानवतावादी में उनके अमिट योगदान को याद किया गया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। वहीं साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रेलिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की कांग चियोंग की चुनौती होगी। वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिगार्ड का सामना करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का

मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% सार्वभौमिक शुल्क को अवैध घोषित किया। इंडोनेशिया में आज सुबह माउंट डुकोनो ज्वालामुखी के फटने से 3 लोगों की मौत हुई। तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आयोजित विश्व कप के दूसरे चरण में महिला रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: playing for you for the last half an hour or so. Before I leave you, let me remind you to join us tomorrow for another brand new edition of the Western Music Program here on the Saichaita channel of Akashvani, Kolkata. Till then, take very good care of yourselves and have a very good night. Please stand by for the news from Delhi.
1: Namaskar. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17

0: तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
0: किक किक किक किक
1: टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

আরাধনা।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहां किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहां, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो, चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,